0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कुमारियां क्या बननी है? टीचर्स बननी है, इसीलिए टीचर्स में साथ में भी।

वहां सेवा करनी है, ऐसे ही रहना नहीं है। सेवा का अभ्यास करना है, थोड़ा ही हिसाब किताब पूरा करके, अगर आवश्यक हिसाब है, चल नहीं सकते हैं इसलिए सेवा करते हैं, तो फेल है। सचमुच कोई कारण है, कईयों की सरकमस्टेंस है, लेकिन कईयों की दिल भी है। शनिवार और इतवार के दिन पूरी सेवा करो, संस्कार डालो, सिर्फ रहने के संस्कार नहीं, सेवा के संस्कार डालो। समझो मैं सर्विसेबल बनने के कारण आई हूं, प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करती रहेगी ना, मजा आ जाएगा ना, तो आप पे भी कोई बहाना बना के अपने को चुरा सके। कुमारिया चतुर होती है, भोली भाली नहीं होती। इसीलिए कुमारिया अर्थात स्व उन्नति में हर समय कदम उठाती रहे, सिर्फ नौकरी नहीं, स्व उन्नति में अपने सरकमस्टेंस अनुसार कदम आगे बढ़ाती रहे। ऐसे नहीं बस चल रही है, नौकरी करनी है, कब तक करेंगे कब तक नहीं करेंगे कुछ सोच नहीं। कुमारी वो ब्रह्मा कुमारी, वो अभी तो कुमारी भी ब्रह्मा कुमारी है ना, सर्विस करने वाली भी ब्रह्मा कुमारी है ना, तो ब्रह्मा कुमारी वो जो विश्व कल्याण की भावना कामना रखे, तो देखेंगे बाप दादा और योग्य टीचर किटकिट वाले नहीं बनना। योग्य टीचर, क्योंकि योग्य टीचर्स की आवश्यकता है। आजकल क्या होता है, ट्रेनिंग भी कर लेते हैं लेकिन सेंटर पर जाती है कोई प्रॉब्लम हो जाती, तो हैंड्स तो नहीं बन सकेंगे ना। कुमारी अर्थात बाप दादा के सेवा साथी और निर्विघ्न साथी, अपने को एडजस्ट करने वाले, एडजस्ट करने वाली हो ना, क्या अगेंस्ट होने वाली है, अगेंस्ट नहीं हो किसी के प्रति भी, एडजस्ट होने वाली। अच्छा तो ऐसी कुमारियां बनेंगी, हाँ तो रहो
सबसे मिलनसार, सबसे अपने को साथी बनाने वाले। निर्विघ्न तू तो बहुत हैंस बन सकती है, अभी हैंस के कमी है। बाप दादा सभी को कह रहे हैं, कुमारियों को, मददगार बनेगी ना, हाथ उठाओ जो मददगार बनेगी। लेकिन कौन सी मददगार? निर्विघ्न मददगार। अभी उठाओ, निर्विघ्न मददगार, निर्विघ्न।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: स्वरूप

0: चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे समन संपर्क हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब नौ लाख आएंगे तो साधन सुन

0: श्राव जो इस वर्ष का स्लोगन दिया है ना, सफल करो सफलता है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा फेरत संकल्पों की सभापति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से फेरत को समाप्त कर सदा समृद्ध पर समृद्ध बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं, समृद्ध बनाओ, समृद्ध बनाओ, समृद्ध बनाओ। व्यर्थ को समापत्ति दिवस बनाओ। हो सकता है जो समझते हैं कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव कम कराते हैं। इसलिए अब इस समापति का समय समीप लाना है। किसको? आपको ना, जो समझते हैं कि अभी समापति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, करना है नहीं, करना ही है, स्वप्न में भी नहीं है। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं, वो हाथ उठाओ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी पहले एक सेकंड में पुरुषोत्तम संगम योगी

in it.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होती है, अचल से अलचल में आती है, उसका कारण सिर्फ तीन बातें मुख्य है। वही तीन बातें बिना समस्या या परिस्थिति बन के आती। वो तीन बातें क्या है? अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना अभी विक्रम कम होती है लेकिन कम। व्यर्थ ज्यादा होती है। व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। और किसका रिजल्ट में देखा तो बोल और कर्म में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता है। उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। जो समय बनाने का है वो सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा और करना, इनकी गिफ्ट सभी से देने चाहते। तैयार है? तैयार है? सभी ने ये दे दिया, वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना मुख से निकल गया न क्या करें। दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो मुख पर। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्यों बाप दादा को बच्चों से प्यार रहना तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय ये सोचते के साकार में जाके इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकार ही निराकार है। बिल्कुल सभी अभी छूटिए, छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की कोशिश करो, छोड़ने की कोशिश। बाप को भी बच्चों पर फीत है, लेकिन पता नहीं क्या कोई किनारे कर लेती हो, जो बाप को भी पता नहीं पड़ता कैसे किनारा कर लिया। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो, ब्रह्मांड जीवन का अर्थ ये है, झूलना माया में नहीं। माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। अभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूलों में झूलो, प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं अनगिनत, झूले से उतरो नहीं।
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Vanessa.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हजार कदम

0: ऐसे नहीं देखना, देख के बाबा मदद करता है या नहीं, इम्तिहान नहीं लेना। बंधा हुआ है बाप, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बंधा हुआ है। तो इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना, कोई बढ़िया गिफ्ट होती है उसको बार बार देखती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रोज अमृत वेले देखना और कर्म करते कर्म योगी जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज कर। अच्छा, गिफ्ट ली, गिफ्ट दी, अच्छा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आप अपने विशेषताओं को जानते हो? जानते हो? हर एक अपने विशेषता को जानते हो? जानते हैं? सेवा में लगा

भ्रमण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि बाप का बनने से some.

Samaç nesi?

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी बात आवे, दीपक जगे हुए दीपक के सामने

0: Esabi samay aega jo aapke samne aane se aapka divya swarup dekhne mein aave saakar sadharan swarup gayab ho jaye jaise baap dada ke samne aate ho to baap dada ko jaisa samay us roop mein dekhte aise aap sabhi bhi aise dikhai denge sadharan nahi dikhai denge sadharan प्रैक्टिकल वासना आती है लेकिन सभी ऐसे स्टेज में पहुंची जाए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ये ब्राह्मण जन्मी याद और सेवा के लिए और कुछ करना है क्या? यही है ना, हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है। सेवा के घंटे अलग है और याद के घंटे अलग है, अलग है नहीं ना? अच्छा, बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है, दोनों का बैलेंस है बैलेंस अंतर पर जाते हैं जाता है ना। कर्म योगी का अर्थ है कर्म और याद, सेवा और याद, बैलेंस समान समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज्यादा है याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं, ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात पाप समान स्व के स्वमान की भी याद, जब पाप की याद रहती है तो सुते ही स्वमान की भी याद रहती। अगर स्वमान में नहीं रहती तो याद भी पावरफुल नहीं रहती।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने पहले भी सुना

Foda-se.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

Arrête.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा देख रहे हैं आपके अनेक भाई बहने अपने जीवन से
2: अपने

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चों को देख तो खुश है, लेकिन आगे के लिए जो भी संबंध संपर्क में आए उन आत्माओं की विशेष
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा यही चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष जैसी समझे मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो जिससे भी मिलो, चाहे आपस संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मना नहीं होते, मणि होते। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि और स्वयं संतुष्ट।

उनके वृद्ध व्यर्थ संकल्प चलेंगे चलेंगे ना, तो वो पवित्रता तो नहीं हुई ना। अब फर्क करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है। उस विचार को इच्छा के रूप में बदले नहीं कर, जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है। से क्रोध भी होता है या तो आत्माओं भी चलता है क्रोध, लेकिन विचार देना

0: तो ये भी लगाव नहीं रखेंगे कि जरूर होना चाहिए, वो नहीं चाहिए नहीं। ठीक है, आप फर्क किया और आपके निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ किया ऑफर या ईशान के वश ऑफर और क्रोध पैदा करें।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अव्यक्ति पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं, तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? सोचो, पालना क्या जाएंगे। Salud.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Chacho। जो समझते हैं दृढ़ संकल्प करे। अच्छा आप घड़ी घड़ी निकाल लेंगे ना तो निकल जाएंगे, रख नहीं दो अंदर क्या करे कैसे करे, निकलता नहीं है ये, नहीं निकालना ही है तो दृढ़ संकल्प करेंगे। अभी हाथ उठाओ जो करेगा, मन से हाथ उठाना पैर से नहीं उठाना, मन से आप नहीं उठा रहे हैं। अच्छा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कितने

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Just

फायदे हुए कितना पुण्य।

Stop.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो उसके प्रति भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक तो को स्वमान की दृष्टि से देखो। हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है, मेरा पापा तो कहते हैं, और सम्मान में रहो और सम्मान दो। एकता लास्ट नंबर पे एक बाबा का बच्चा है, बाबा को सामने लो, उसके गलती को सामने नहीं लो। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख के आए, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं, दाल रोटी संगठन अच्छा, ब्राह्मण जीवन किटराग से सेव हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा ले है, लेकिन अभी कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गए। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते, कभी वो भी समय आएगा। जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संग दोष में बहुत है, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए, लेकिन संग का रंग आपके संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संघ दोष पे नहीं हो। आज होली है ना, तो जो संघ दोष में आ जाते हैं टेम्पटेशन है, संघ दोष पे नहीं हो। Me आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को साफ दिल मुराद हासिल करके देखो। दिल से सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगाते हैं ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते, तो आज होली मनाओ उल्टे रंग को, पाप के रंग में रंग लो। अच्छा आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी कह दिए तरस पड़ते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आप लोग छोड़ने में तो जय भाई जय बहने, जो बीने में थे विशेष परिवार निर्विघ्न हो, उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले बाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के व्रत भी करते हो, लेकिन खास परिवार के उन्नति के लिए और यज्ञ की कारोबार आगे आगे बढ़ते जाए, गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए, उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना। कोई भी सरकमटेंस वो सभी के योग से, सभी के समय देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प हो तभी हो।
4: यूथ विंग के लिए भी 1 करोड़ की एप्लीकेशन दिया हुआ है।
3: अच्छा है, बड़ी दिल रखो, आता जाएगा। सोचेंगे ना ये करूं नहीं करूं नहीं करूं करूं, मैं टाइम नहीं। आजकल समय है, अगर आप सभी शुभ भावना एक संकल्प रखो, होना ही है, हो सकता है। ये वरदान है, दिल बड़ी और कायदे सिर भी और दिल बड़ी भी, सिर्फ कायदा नहीं, दिल बड़ी रख करके फिर कायदा को। सभी का एक ही संकल्प हो, होना है, क्यों क्या नहीं होना ही। तो इस विधि से सब सहज होता है।
4: सोनीपत की भी 2 दिन के बाद डेट है कोर्ट में, भी हो जाए।
3: बस 10 मिनट आप सपने में बनी हुई आत्माओं को खास टाइम निर्विघ्न परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है, सहज हो जाएगा। अभी समय है, सहज हो सकता है, सिर्फ हो जाएगा, हो जाएगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

Batman.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की ना, तो विघ्न कितने आए और आपको कुछ हुआ तो बाप दादा छत्र छाया बनाता, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सारी दुनिया करके सब छोड़ करके भाग गए। जब पाकिस्तान हुआ तो क्या हुआ, सब भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट पर गया समाज। चीज लगती थी ना वो छोड़े कैसे, प्यार होता है ना उसे, तो जो सिंधी लोग एंटी थे आपने जो उस समय और सामान भी दिया, जो बढ़िया बढ़िया चीज थी ना वो हाथ जोड़ करके देखे गए तो आप यूज करो। और दुनिया वालों को हंगामा के लिए 5 रुपए में सारा बैल गाड़ी सब्जियों की थी, 5 रुपए में सब्जियां। कितने मजे से सब्जियां

0: noi. Jatra Jaya Pan. Kitna safety se istapna ka kaarya kiya.
1: Sunte rahiye Shiva Radio. यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: चारों ओर की शुभ संग।

जो करना है सो

Donnerlager.

0: होली बच्चों को होली की मुबारक हो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संकल्प

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: डबल फॉरेनर्स का फेवरेट शब्द है, बोलो कौन सा होगा? दो शब्द और है भी इंग्लिश है, कंपेनियन और कंपनी। पसंद है डबल फॉरेनर्स? पसंद है ये दोनों? एक हाथ उठाओ अगर पसंद है तो, एक हाथ उठाओ। अच्छा, भारत वालों को पसंद है? पसंद है, पसंद। पीछे वालों को पसंद है? पसंद है। अच्छा, कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। Yes।

सभी बच्चों को रिवाइज़

Jeff Sarasamandi. Jessa.

Nadie viene y

Sad for some.

साथियों की तरफ। संबंधों

कोई बच्चे कोई कोई समय

bienvenido, Nicolás.

Five weeks of eating carbs.

Exacto.

Tak widział. To kompletnie.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Suck.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Be happy.

Exit.

Síganme, la guerra. Acha, api. Sarete.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

isso?

だ。恋人。

0: खुशी नहीं कर
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: उसकी

संपादक द्वारा सेवा करती हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो, ये मनसा सेवा रंगत दिखाएंगे जो स्थापना के आत्मिक पाप के मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। फलस्वरूप आप भी देख रहे हो, वही

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Matze.

कैसे करूं, क्या करूं, नहीं।

चाहिए।

Ještě.

Ještě.

Tjena

अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रोड़ियां सुनते हैं, रोड़ियां बहुत हिम्मत की करते हो। निश्चय के साथ

अनेक कलप का जन्म सदा

is at the God saying, shut

Shit. Hey. Ese.

0: Sharako.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल के लोग

好き。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

ऐसे नहीं, दूसरे प्यारे नहीं है, वो प्यारी है लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार। वो क्या? जैसे खाना बनाने वाले जो भी कोई ड्यूटी करने वाली है, बाप दादा तो कहते हैं, कोई झाड़ू लगाने वाला भी है ना, वो भी भाग्यवान है। क्यों? खुश हो जाते, चाहे खाने बनाने वाला, चाहे कोई भी ड्यूटी वाला, लेकिन मधुबन वालों को चांस है। Oh.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Got it.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाबा बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, प्रकाश स्तंभ पर बैठे
2: जी। बच्ची को चक्कर लगाए, तू कहाँ कहाँ रही है, लेकिन बाप दादा Yeah.

top.

خوشی.

0: उसके लिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी अभी आज के दिन थ्रेट चेक करो, मैं कौन? मैं फ्रिस्ता। ये सभी चेहरा और चलन बाप के सामने, विश्व के सामने दिखाना है। तो सभी बाप दादा के इस मुबारक को मैं कौन बोलो? करने के बाद फिर से याद करना मैं कौन? मैं फरिश्ता। तो फरिश्ता हूँ और फरिश्ता रूप से बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही। सभी को पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Bob.

कोई भी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आती माला भी रुकी हुई है? ब्रह्मा बाप ने कहा, चारों ओर के बच्चे हर एरिया एरिया के मर्ज कर दी गई, जैसे आपके सोन है ना, तो ऐसे एक एक सोन नहीं, सोन तो बहुत बड़े बड़े है ना, एक एक विशेष देश इमर्ज कर दी गई और सबकी चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे और माला तैयार हो जाएगी।

cepat. Kinderman, Gardimi, tua aja lagi pergi. Lika.

0: बैलेंस में अंतर सेवा के उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्व अपमान भी मिक्स हो जाता इसकी अभी आवश्यकता है। जितना सेवा में आगे बढ़ती है उतना ही वृद्धि में दृष्टि में बोल में चाल में
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जाती है

0: said, Queen Bashungu, Janwar ko adat dal do apne ghar mein aane ki. Phir tango ke bagao bhi. Lekin adat to par jaati hai. कौन है? सुनाया एक तो आत्महत्या अंत तीनों काल चेक के समझ के फिर कुछ भी कर्म करो, सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती है और कभी स्वास्थिति ऊंची हो जाती है। दुनिया में सोचो फिर करो, नहीं तो जो सोच के नहीं करते तो पीछे सोचना पश्चाताप कर्म हो जाता। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप बदल जाता और पहले सोचना ये ज्ञानी अपने को बनाओ जो अपने आप में भी मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: साधारण है मैं, शरीर था।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो, आता है चित्र खींचने आता है।

सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल, घर में इंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी, ड्रिल करने के लिए रेडी है, कांधे लाओ। सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ चित्र होता है ताज तख्त अपना चित्र।

Sedekah.

रचना इस फिरके के चर में बैठी हुई पूर्वज और पूजा

பேசிக்கிட்டு பாச்சா சாரா.

See.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हम क्यों साथ

खुशी की बात

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Bye.
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगी भी परिचय तो मिला है ना, परिचय मिला है तो प्राप्ति तो करनी चाहिए ना परिचय से। तो यही बाप दादा की आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे, दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ। क्यों कि इस समय जितने दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी नहीं दुआएं देनी है आपको, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। स्टॉक जमा करना है, राजा बच्चे होना। बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते कब नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा अगर बच्चे को देवर पुरुषा रहते be

del Quito a Elena. Rosa.

0: और उड़ाते
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वर्तमान

उसमें ये सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य see.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये रोज हरे को काटनी चाहिए, ऐसे नहीं हम बिजी है बीच में, समय पर तो समय एक सेकंड, चाहे कोई बेटा भी हो बात भी कर रहा हो, लेकिन एक सेकंड उनको बीटल करा सकते, और स्वयं भी अभ्यास कर सकते, कोई मुश्किल नहीं है। दो चार सेकंड भी निकालना चाहिए, इससे बहुत मदद मिलेगी, नहीं तो क्या होता है, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है ना, तो विधेयी बनने में टाइम लग जाता, और बीच बीच में अभ्यास होगा तो जब जाए उसी समय हो जाएगा, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है, अचानक के पेपर में ये विधेयी पन का अभ्यास बहुत आवश्यक, और विधेयी बनने का पुरुषार्थ करते रहे तो सूर्यवंशी तो नहीं हुए ना। इसलिए जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास करना जरूरी, फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वो नहीं होगा, अभ्यास ही हो गया ना, एक सेकंड में न्यारे होने का, तो कोई भी बात हुई एक सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाए, सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ती। संस्कार मेहनत के संस्कार सूर्यवंशी बनने नहीं देंगे, लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएंगे, अगर विधेय बनने का सेकंड में अभ्यास नहीं है तो जानबूझ के माया कमजोर होंगे, चाहे सुबह में चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में वृद्धि में वायुमंडल के प्रभाव में, बात में कमजोर होंगे, तो है। एक सेकंड में विदेही बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विदेही माना तो इससे ज्यादा हो गया तो देख के साथ ही सुबह हो, संस्कार कमजोरियां सब देख के साथ और देह से न्यारा हो गया सबसे न्यारा। इसलिए यह ड्रिल बहुत सहयोग देंगे। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन को कंट्रोल कर सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके, नहीं तो आदतों की तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करे तभी विधेय बने। अच्छा,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिए। इस विमान में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टार्ट करना है तो मेरा बाबा बस चलाना आता है ना विमान। जब भी कुछ हो मधुबन में पहुंच जाओ। भक्ति मार्ग में चार धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं और मधुबन में भी चार धाम है तो चार धाम किए। पांडव भवन में देखो चार धाम है। जो भी आते हो पांडव भवन तो जाते हो ना। एक शांति स्तंभ महा धाम, दूसरा बाप दादा का कमरा, ये सने का धाम, और तीसरा झुपड़ी, ये सने मिलन का धाम, और चौथा हिस्ट्री हाल। तो आप सभी ने चार धाम किए तो मान भाग्यवान तो हो ही गए। अभी किसी भी धाम को याद कर लेना, कब उदास हो जाओ तो झुपड़ी में रोहरियान करने आ जाना। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना। और वेस्ट थॉट्स बहुत तेज हो, बहुत फास्ट हो तो हिस्ट्री हाल में पहुंच जाना। समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो बाप दादा के कमरे में आ जाना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बहुत दुखी है, बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता। पहले तो आप शक्तियों को रहमाना चाहिए, कितना पुकार रहे अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय के पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुना तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे, जिगर से पुकार रहे, तरफ रहे। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे पुकारे। आपका गीत है दुखियों पर कुछ रहम करो, स्वयं आपके कोई रहम नहीं कर सकता। इसलिए

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जय स्व के परिवर्तन में जय सेवा के सफलता में जय हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तन सफलता का
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: संकल्प। सर्वशक्तिवान बनत।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्राह्मण परिवार का अर्थ है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी, ऐसा नहीं कि बाप मेरा मैं बाबा का सब कुछ हो गया। बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन ये भी निश्चय की विशेषता है, चारी बातों में निश्चय विजय आवश्यक। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में ये स्मृति में रहे कि सब
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

一。

Kuş.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना, साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई न कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट स्टॉक है। तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जान फ्राक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई कोर का गिफ्ट दो, मुख से नहीं अपने चेहरे और चलन से। और किसको चलो कोई कोई इमर्ज नहीं भी हो, शक्ति इमर्ज नहीं भी हो, तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वो कौन सी शुभ भावना और शुभ कामना है? शुभ कामना करो कि ये मेरा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाए। इस भाई बहन का भी औरती कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं वो लेते नहीं, अच्छा शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना, चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं। तो आप हो कौन? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो, सभी विश्व परिवर्तक है। ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है वो ही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा लेकिन हर जन्म में राज परिवार संबंध में होगा तो विश्व परिवर्तन कही विश्व राज अधिकारी बनता है। इसलिए सदा ये अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं लेकिन सदा आपके राज में हिसाब नहीं करना, इसने ये किया, इसने इतना बार किया। मास्टर दादा बन गिफ्ट देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे? उसके मुख से मन से ये शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। एक तो खुशी बांटते हो तो कहते हैं मुबारक हो। मनाती हो तो कहती है मुबारक हो। अगर आप जो भी सामने आवे मुख से ऐसे शब्द बोलो
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पवित्रता ही मानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट वन नेगेटिव भारत चिंतन के संकल्प चलते हैं, तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं होता है क्यों? शराब भी अंश वैसे नहीं आसन जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसीलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्र मनसा को हल्का नहीं करना। क्यों मनसा बाहर से

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जय डॉलर को, जय पाउंड को, है तो पेपर ही, तो पेपर का तो चलेगा, सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? डाउन मनी डाउन तो होनी है, और आपकी मनी सबसे ज्यादा है मूल्यवान। जैसी शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओमंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कमाई का साधन कुछ नहीं था, एक तो समर्पण हुए ब्रह्मा बाप के साथ, अखबार में डाला रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होंगे, फिर आपको अखबार में नहीं के पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे टीवी में, दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट

सुनते रहेंगे कुछ भी हो जाए। दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जानने में तो सब हो जाएगा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को हर बच्चा दिल का दुलार है, चाहे नंबर वन समय से याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था, ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। सिर्फ ज्ञान से जाना,

से बाप को याद नहीं किया तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वर

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

विशेष

Wolken.

0: Jesse up. Loco con pervertirme en el balón. Tristán de Teo. Que sab kuch karte. Karam yogi. कमल पुष्प के समान रो ऐसे आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते साधना और साधन
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सभी के लिए कहते हैं कि बीच बीच में समय निकाल के, चाहे पुराने चाहे नए, सभी को एकदम अशरीरी बनने का ड्रिल जरूर करना है, क्योंकि आने वाले समय में सेकंड में अशरीरी बनना ही पड़ेगा। तो ये ड्रिल कोई के समय नहीं मिला, कितना भी कोई बिजी हो, पानी की प्यास लगती है, क्या पानी पीने नहीं उठेंगे? जरूरी समझ के उठेंगे ना। तो ये एक मिनट अशरीरी बनने की ड्रिल, ये प्रैक्टिस जरूर समझते हैं ना, समय आएगा कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास उस समय अशरीरी बनने नहीं देगा। इसलिए अभी से कोई भी समय निकाल, सारे दिन में समय प्रत समय जो भी निश्चित करो, एक सेकंड में अशरीरी आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए, बॉडी कॉन्शियस अपने तरफ की। ये अभ्यास सभी को करना है, चाहे पुराने चाहे नए, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से ये बात कही है, लेकिन
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आप परमात्मा के प्यारे

चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं लेकिन आप सितारों की चमक Sss.

Peace.

0: सारे चक्कर में इतने श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी बहुत टाइम हो गया है, कोई नया कार्य की इन्वेंशन नहीं निकाली। वर्गीकरण का भी कार्य अभी काफी टाइम चल चुका, कॉन्फ्रेंस भी चल चुकी, युद्ध यात्राएं भी चल गई। अभी कोई नई सेवा की विधि निकालो, सोचो, जिससे आवाज सहज फैल जाए। अभी तक जो भी किए सेवा के प्लान बाप दादा को पसंद है और वृद्धि भी हुई है, लेकिन बहुत समय चल चुके ये प्रोग्राम्स। अभी कोई नई इन्वेंशन तैयार करो, कोई भी करे, छोटे करे तो इन्हें एडवांस मुबारक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, हर बच्चे को बेफिक्र बच्चा

मुश्किल है कि

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अब तो इवा रेडियो ना, इवा रेडियो कोई भी समय आवे, कैसा भी समय आवे, लेकिन ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी
2: Everything.

जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: भगवान के बच्चे अगर सदा खुश नहीं रहेंगे कौन रहेंगे? आप ही हो ना, चेहरा कभी भी चिंता वाला नहीं, शुभ चिंतक। जब चिंता आवे ना किसी भी प्रकार की, तो पाप मेरे कंबाइंड चिंता पाप को दे दो, शुभ चिंतक आप बन जाओ। क्यों को पाप दादा सदा हर्षित रहते हैं ना, तो बच्चे मुरझाए हुए किसके बच्चे? भगवान के। चेहरा कभी भी चाहे बाहर आ जाए, लेकिन बाहर को भी आप रुई बना सकते हो। बाप के साथ अपने को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? जो बाहर है वो रुई हो जाए, क्योंकि सर्वशक्तिमान को साथ कर दिया ना। आप भले कमजोर हो लेकिन सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड है, तो समय में काम में लगाओ, कहने तक नहीं काम में लगाओ, तो सदा खुश नेमा चेहरा और दिल सदा खुश नसीब। बाप दादा चैलेंज करे कि अगर खुश नसीब खुश नेमा चेहरा देखना हो तो भगवान के सेंटरों पर देखो, करे चैलेंज।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखो, निश्चय का पर्तक्य परवान है, रूहानी नशा
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पवित्र संकल्प करो, संस्कार इकट्ठा करो, स्वभाव का मत भेदो। तीसरी बात कमजोर होने की होती है, कोई ने किसी Chat.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Yeah.

0: Everyday. Hey. İsliye. Sada.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: That's

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम
2: सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा वाक कर्म द्वारा भी सेवा करते हो, उसकी प्राप्ति आत्मक खुशी मिलती है। तो चेक करो, सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वो सेवा यथारथ सेवा नहीं। कोई ना कोई कमी है सेवा में, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुश साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की, उन आत्माओं के वायुमंडल खुश हो जाए। ये सेवा खुशी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Light.

0: सहयोगी आवश्यकता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: Sutilna. Sutil. Acan. Karena pelipi. Kayane. Ke. Korova. Sena. Ke. Nimitta Panivimavir Ka Kalyan Kisya Dwaramva Shakti Dwaramva To Shakti Ka और सब मानते भी हैं कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो ब्रह्मा भाव परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी अल्प में यहां पहुंच नहीं पाते। के वायुमंडल की प्रांतिया इस विश्व क्रांति के कार्य को अभी फ्रिष्टे रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना, देख रहे हो फास्ट गति हुई है या कम हुई है? फास्ट हुई है ना, तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: खुश नसीब खुश दिमाग, बातें का काम है आना, ये भी समझ लो, बातें नहीं आएगी, बातें आएंगी, लेकिन अपना लक्ष्य लक्ष्य में लाना है, घबराना नहीं। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बना दी। क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते, इसलिए सभी चाहते हैं, लेकिन उनको विधि नहीं आती। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है ऐसे। अभी इस वर्ष ये लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Start.

I'm looking. कर सकते हो ना? अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना, करो नहीं लेकिन कर सकते हो ऐसे। ज़्यादा में ज़्यादा

से नहीं मन से। आर्डर करो सुखम वतन जाना है। Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो, सेवा तो की लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं साथी और वायुमंडल जन सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में सेवा की सफलता की तीन बातें विशेष सुनाई थी, याद होंगी। पहला नंबर, सेवा अर्थात निमित्त भाव। दूसरा, निर्माण भावना। तीसरा, निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, ये सभी साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिनों की सेवा की

0: चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो तो ये चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी जो भी आए हैं, बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा, क्यों कैसा भी है

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इस

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Okay, look at it.
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Yeah.

Jimmy Rod.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Take it.

Cero.

Coach.

Arrête.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखो घर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार एक दिन भी मिस नहीं होता। अगर रोज विधि पूर्वक बोली पढ़ते हैं तो एक दिन भी याद प्यार मिस नहीं करते। मिलती है ना, मिलती है याद प्यार, मिलती है रोज, मिलती है सभी को, मिलती है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है, पता है कौन सी आश है? वो जान तो गए हो, जान गए हो ना टीचर्स, जान गए हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो, बाप दादा पुरुषार्थ देख करके खुश कराते हैं, लेकिन एक आश ये पुरुषार्थ में अभी दीवार गति चाहिए, पुरुषार्थ है लेकिन अभी दीवार गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप बाप द्वारा फुर्सत दिलाने वाले।

0: विश्व के निवारण करने वाली हो तो क्या स्वयं के छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्योंकि मुक्ति दाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, तो मास्टर मुक्ति दाता तो हो ना, लेकिन क्यों रुकावट का दरवाजा बंद है? क्यों तैयार है? लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? शरद में कमजोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाजा है, वो है क्यों? क्वेश्चन शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाते? तो बाप दादा अभी देश विदेश सभी बच्चों को ये स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा क्यों इसको समाप्त कर हर एक समझे मुझे करना है। टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। मैं मधुबन वाले है ना, करना है ना। తెలిసి త్రెట్ సంకల్ప కరేగి एक तो के समान संपर्क में साथ भी करना पड़े मुझे समस्या नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं बाबा को पता है, हाथ उठवाए के तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चीकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है कौन तैयार है, अभी भी और अंतर्मुखी सूक्ष्म चेकिंग करो। अच्छा, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ, नाराज नहीं किया, राशि किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने जमा हुआ, सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का रिस्पॉन्स मिला वो चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहे, ऐसी सुख्यम चेकिंग फिर भी अपने आप को करो, और अगर ऐसी सुख्यम चेकिंग में पास हो बहुत अच्छे हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी बात तो समा देना, अंदर मन में बाप दादा को देख करके समा देना। एक सांस शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति, अगर ये दोनों विशेष आप में है तो पास विधान हो जाए। इसको इमर्ज रखना, सांस शक्ति को भी और समाने की शक्ति को भी। ऐसे नहीं समाना जो बीमार हो जाओ, ऐसे नहीं। कई अंदर समाने की कोशिश करती है ना तो बीमार हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे नहीं समाना, समाने की शक्ति से समाना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Odessa there. If they save Brahmanoki, Silinski Shakti, Remdel, Pavnatwara, Vasankalabdwara, Halchal ko parivartan nahi kar sakti. जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो. जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की सुन रहे हो.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Neşik diyor duvara. Sakaştım. Cesiz.

cascata. Stars.

So

open. जो आपकी टॉपिक रखी है, हैप्पी और होप, ये फैलाओ। इस बातों से मुक्ति तो दे।

Σύραγγο. Cinco.

0: इस सीट पर सेट रहो बस। साइट सीन, मनोरंजन हो जाए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Oh,

0: और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन सेवा में सदा उपस्थित रहते हो, सदा सेवा
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना शान नहीं होता है तो आपका भी परिवार ना। तो बहुत बढ़ रहा है तुमको अशांति, तो अब रहम दिल बनो। Awesome.

C'est vrai.

सभी को मुक्ति में भेज। आप बाप के वरदान से राजा अधिकारी बनेंगे।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मैं परम धाम निवासी

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा था, तो Yeah.

Vika u vaku crve, tap tva tu žel.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी हर सोन

0: सेपना बड़ी सभा में अपना सुनावे, छोटे मोटे नहीं लेकिन ऐसा हो जिसका प्रभाव जनता पर पड़े, जैसे हर वर्ग की सेवा करते हो ना, तो ऐसे भी कोई तैयार करो। ऐसे ही कोई धर्म वाले को, अथॉरिटी को तैयार करो जो अपना अनुभव सुनावे कि वास्तव में जो परमात्मा का परिचय सही ब्रह्मा कुमारियां देती है, ब्रह्मा कुमार देते हैं, वो राइट कैसे उनके मुख से ये अथॉरिटी के बोल निकले। अगर एक पॉइंट रही हुई है, गीता का भगवान कौन, वो भी सिद्ध तो होंगे ना। जब ये सिद्ध हो तब
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आज के दिन फरश को विदाई देते हुए इंसान Yes.

सकते हो, हाथ उठाओ, देनी पड़ेगी। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना उठा रही है, पुराने संस्कार को सदा के लिए हाथ उठा रहे हैं, फिर से उठा।

be. Bob Dada be money man. Dance.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी बाप दादा ने देखा कि अगर ब्रह्मांड मिलके कोई भी एक संकल्प करे तो वाइपर, लेकिन सब
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे हैं, तो जैसे पूछते

छोड़ के नहीं गए।

0: बोलेंगे जो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यों लग जाए, वो क्यों आपको दिखाई देंगी, क्यों क्रोध पर्त के दिखाई देते हैं। जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं, लेकिन पवित्र रह करके दिखाते, चाहते हो तो ये पार्थक्य प्रमाण है। इससे सभी आकर्षित होके सुते ही आएंगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होगी

Joe.

समय पर शक्ति देने चाहती है, दुआएं देने चाहती है, एक्स्ट्रा मदद देने चाहती है, फॉर्म मिल नहीं सके।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

संतुष्ट रहने वाली। संतुष्ट बाणियों को

मणि के चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक

Strong.

Yeah.

そっとして。

कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय Yeah.

Jack, and poker nickel die. Apne istat.

Agent.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्रह्मांड सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, योग बाप को सब प्रकार के संकल्प वा जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का भोज वो दे दिया है ना, भोज दिया है या थोड़ा सा रह गए, क्योंकि थोड़ा भी भोज फरिश्ता बनने नहीं देंगे। और जब पाप आए हैं बच्चों का भोज लेने के लिए, तो भोज देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं भोज दे दिया है वो हाथ उठाओ, दे दिया है देखना, सोच के हाथ उठाना, भोज दे दिया है, दे दिया है। अच्छा दे दिया है मुबारक हो, दे दिया है तो बहुत मुबारक हो, और जिन्होंने नहीं दिया है वो किस लिए रखा है? भोज से प्रीत है क्या? भोज अच्छा लगता है? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, तो बोझ का फिक्र होता है ना, बोझ लेने के लिए बाप आए, क्योंकि तेसर जन्म से बाप देख रही है बोझ उठाते उठाते बच्चे सभी बहुत भारी हो गए, इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रही है भोज दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है? अच्छा लगता है भोज? सबसे सुखम भोज संस्कार का। बाप दादा ने क्या देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार के आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि ये रहा हुआ संस्कार समय पर तो का देता भी है और अंत में भी तो का देने के निमित्त बन जाएगा। इसीलिए आज संस्कार का संस्कार करो, हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में दीवार पुरुषार्थी नहीं है, पुरुषार्थ करते हैं लेकिन दीवार पुरुषार्थी नहीं है। कारण दीवार पुरुषार्थ क्यों नहीं होता, कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी लेकिन सिर्फ मारा नहीं जलाया भी, ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करती है, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए संस्कार, पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे ही बिंदु, तो और कोई भी संकल्प नहीं चले। मत्सा सेवा का अटेंशन रखना इतने दुखी आत्माओं को चिल्ला रही है। उनों को गिरना देने की सेवा में
1: से।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी पाप दादा सभी बच्चों के चेहरे सदा रूप दाता करने की शक्ति है। संभालो, साखर में कितना कचरा डालते हैं। डालने वाले को वो कचरे के बदले कचरा नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगत

Everybody wants.

Catching power. Catching power. बहुत आवश्यक होगी। ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं कर सके। सिर्फ

Nossa, Kiki. Tô apanemitico.

Precisamente.

इसका साधन है।

rehearsal पढ़ते जाएंगे। और से

Será?

उसे अतः

0: क्षमा करने का।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।